0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm Radio Olive.
1: I'm number अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency. Awesome.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
0: Awesome.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिस योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हाँ जी, एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 308-

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडो ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
2: मैं अनिल कपूर, रेडियो ऑलिव, योर बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.

0: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
1: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
0: Cool song.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय रेडियो ऑलिव, रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडो ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. और वक्त हो गया है जोहर की अजान का.

Radio Olive, your happiness frequency.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
2: अरमान मलिक
3: नंबर वन
1: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: जब माधुरी मुस्कुराती है, वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है. हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने.
3: हाँ,

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। TNC अप्लाई।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
3: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
2: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: धुन। हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Hi everyone, I'm Arman Malik, 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
1: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
0: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 May तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
3: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: द बिग बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam, main hoon Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

Welcome and happy Friday. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with your show ka naam, Yes, Tech Talk, where we talk about only technologies. Tech duniya mein ab robot na sirf movies tak limited nahi hai. South Korea ab bahut hi acche se robots develop kar raha hai. Aur ye normal factory robots nahi hai. Walk, talk, recognize faces aur basic conversations bhi ye robots kar sakta hai. Aur interesting baat ye hai ki kuch robots hospitals aur airports pe agar main baat करूं तो टेस्टिंग फेज में यूज हो रहे हैं. मतलब इमेजिन कीजिए एयरपोर्ट पे एक रोबोट आपको गेट तक गाइड कर रहा है और एशिया रोबोटिक रेस में काफी ज्यादा आगे चल रहा है. मतलब थोड़ी दिन पहले आई वाज वाचिंग वन वीडियो फ्रॉम चाइना जहां पर होटल में फूड डिलीवरी के लिए भी रोबोट्स आते हैं. सो रीजन क्या है हैविली इन्वेस्ट करने का? फ्यूचर वर्कफोर्स प्रॉब्लम. आपने आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और ह्यूमन वर्कर्स जो हैं वो कम होंगे. इसीलिए रोबोट्स को यू नो कस्टमर सपोर्ट, डिलीवरी और असिस्टेंस जैसी चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है. लेकिन इंटरेस्टिंग अगर डिबेट है तो वो चल रही है कि क्या ह्यूमंस इमोशनली रोबोट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि मशीन्स चाहे कितनी भी स्मार्ट हो लेकिन इंसान की जो वॉर्मथ है वो अलग होती है. व्हाट अबाउट यू? 3311063 इज माय नंबर. फटाफट से मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताइए कि आपको क्या लगता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तुमने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
3: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर।
6: TECAS

सो आपका फोन अब आप ओपन करने से पहले ही समझने लगेगा आपको कि आपको क्या चाहिए. गूगल का एंड्रॉइड 17 अपडेट और जेमिनी इंटीग्रेशन टेक वर्ल्ड में काफी बज क्रिएट कर रहा है. अब फोन सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करेंगे बल्कि प्रिडिक्ट भी करेंगे. मतलब सोचिए कि आप फोन आपको अच्छी तरह से जानता होगा जितना कोई भी नहीं जानता होगा. अगर आप डेली सेम टाइम पे ऑफिस जाते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक, रिमाइंडर्स, वेदर, मीटिंग अलर्ट सब कुछ बता देगा और वॉइस असिस्टेंस भी स्मार्टर हो रहा है. सो कॉल मॉम टाइप कमांड के बियॉन्ड फोन जो है वो लॉन्गर कॉन्वर्सेशन अंडरस्टैंड करने की तरफ मूव कर रहा है. सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि गूगल अब स्मार्टफोन्स को AI कंपेनियंस बनाना चाहता है. मतलब डिवाइस जो है वो सिर्फ टूल नहीं असिस्टेंट होगा. सो व्हाट डू यू से? मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये. बाय द वे लाइफ बहुत आसान हो जाती है जब हमारे पास गैजेट्स जो है वो स्मार्ट होते हैं. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलवेज. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
1: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: T-E-C-H.
5: Tech Show. Tech Show.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

भाई फ्यूचर का इंटरनेट टावर से नहीं बल्कि सैटेलाइट से आने वाला है, ये तो हम सबको पता है। अभी दुनिया में एक साइलेंट टेक वॉर चल रहा है भाई, स्पेस इंटरनेट रेस, विच इज लाइक स्टारलिंक ऑलरेडी जो है थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, और अब चाइना भी अपना सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, इंटरनेट डायरेक्टली स्पेस सैटेलाइट से मिलेगा, मतलब रिमोट विलेजेस, माउंटेन्स, शिप, एयरप्लेन्स, हर जगह पर इंटरनेट होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम है टेक टॉक, वेयर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि आज भी दुनिया के मिलियंस लोग स्टेबल इंटरनेट एक्सेस से दूर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसका इंटरनेट नेटवर्क स्ट्रांग है उसका डिजिटल इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए कंट्रीज अब स्पेस को नेक्स्ट इंटरनेट बैटलफील्ड की तरफ देख रही हैं। और सच भी है यार, फ्यूचर में हो सकता है कि वाईफाई पासवर्ड से ज़्यादा सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाए, एंड आई फील कि यार ये कोई पीछे जाने वाली नहीं बल्कि बहुत ही आगे का सोचने वाली बात है। बाय द वे आई हैव लॉट मोर थिंग्स टू टॉक, पर आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
0: Gio Bindas.
2: Radio

की अगर बात करूं तो पहले फोन्स ना फोल्ड होते थे, फिर स्ट्रेट हो गए और अब फिर से फोल्ड हो रहे हैं। टेक इंडस्ट्री ऑफिशियली फोल्डेबल फोन्स पे दोबारा बिग बैट लगा रही है, पर क्यों? सैमसंग हुआ, मोटरोला हुआ, हुवाई हुआ, सब एग्रेसिवली फोल्डेबल फोन्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और अब ट्राई फोल्ड कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं, मतलब फोन्स लिटरली मिनी टैबलेट बन सकता है। इंटरेस्टिंग थिंग ना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है। तो पुरानी चीजें लौट कर आती हैं इन फैशन, बट ये टेक वर्ल्ड में कैसे? सो प्रैक्टिकल यूज केसेस में अगर मैं बात करूं तो ये इंक्रीज हो रहा है। मल्टीटास्किंग है, गेमिंग, बिगर स्क्रीन, कॉम्पैक्ट साइज और सब एक साथ मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ड्यूरेबिलिटी। लॉन्ग अगर टाइम की बात करूं तो क्या ये लंबे टाइम में चलेगा? लोग स्टिल कंफ्यूज हैं, स्क्रीन कितने साल सर्वाइव करेगी। और टेक हिस्ट्री देखी जाए तो नए कॉन्सेप्ट्स पहले एक्सपेंसिव होते हैं और फिर ग्रेजुअली नॉर्मल बन जाते हैं। जैसे कि यू नो टीवीज, जो पहले फ्लैट टीवीज हुआ करते थे, वंस इट वॉज सो एक्सपेंसिव, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गए। सो ऐसे ही ये जो फोल्डेबल फोन्स हैं इनके साथ भी वही सब चल रहा है। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

सो फ्यूचर मॉल्स में ना आपको ट्रायल रूम का वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब शायद ये खत्म हो जाए। अब AI पावर्ड स्मार्ट मिरर्स का ट्रेंड फास्ट ग्रो कर रहा है। कॉन्सेप्ट काफी फ्यूचरिस्टिक है, मतलब मैंने सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, पर अब आपको बताती हूँ कैसे। आप मिरर के सामने खड़े हो और बिना कपड़े चेंज किए, बिना कोई मेहनत किए, मिरर जो है वो आपको दिखाएगा कि कौन सा आउटफिट आप पे कैसा लगेगा। मतलब AI और इतनी अच्छी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि इंटरेस्टिंग थिंग के ब्रांड्स इसको शॉपिंग का फ्यूचर बोल रहे हैं, क्योंकि ये फास्टर शॉपिंग, लेस रिटर्न्स और पर्सनलाइज स्टाइलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया जनरेशन के लिए ये परफेक्ट लगता है। मतलब मिरर आउटफिट सजेस्ट, मतलब कितना सुनने में कितना नया लग रहा है ना, कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कार्टून वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे कोई जैकेट पसंद आया और उसके साथ कोई शूज़ बेटर लगेंगे या नहीं, भाई मैंने जैकेट पहना वही मिरर के सामने, पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिरर के सामने मुझे वो जैकेट लेके खड़े होना है और शूज़, तो वो बता देगा कि ये शूज़ और जैकेट साथ में कैसे लगेंगे। मतलब फ्यूचर में शॉपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है। मतलब सोचिए, अभी जब हमें इतना टाइम लगता है डिसाइड करने में, हम ट्राई करते हैं, पूछते हैं 2-3 लोगों से, अपने आसपास थोड़ा सा वॉक करके देखते हैं, तो हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं, पर जब शॉपिंग इतनी फास्ट हो जाएगी तो मुझे लगता है हम और ज्यादा स्पेंडिंग जो है अपनी बढ़ा देंगे। व्हाट अबाउट यू, क्या लगता है आपको? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली।
3: हे, दिस इज इलियाना डिक्रूज।
4: दिस इज मी ऋतिक रोशन।
5: हाय, आई एम आलिया भट्ट।
6: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
7: ECA

0: इमेजिन आपको दोहा से किसी दूसरी कंट्री जाना है, सिर्फ एक घंटे में आप पहुंच जाते हो, वो भी 1000 किलोमीटर पर आवर के ट्रैवल से। मतलब हाइपर लूप प्रोजेक्ट्स फिर से डिस्कशन में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अल्ट्रा फास्ट पॉड्स वैक्यूम लाइक ट्यूब्स में ट्रैवल करना। मतलब आपको दोहा टू दुबई जाना है और वो भी सिर्फ आप एक घंटे में पहुंच सकते हो। एक्सपेक्टेड स्पीड है इसकी अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब एयरप्लेन लेवल स्पीड लेकिन ग्राउंड ट्रांसपोर्ट। सो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये कितना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है मेरा शो जिसका नाम है टेक टॉक। UAE और यूरोप में कुछ टेस्टिंग डिस्कशंस फिर से एक्टिव हुए हैं और ऑनेस्टली अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ट्रैवल कल्चर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस डेली कम्यूटिंग पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे, कॉस्ट, सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन टेक वर्ल्ड का रूल सिंपल है, जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं वो फ्यूचर बन जाती हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। बाय द वे, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सो आज का जो बच्चा है ना वो फ्यूचर में शायद ये बोलेगा कि रोबोट कपड़े फोल्ड कर दो। सो CES और ग्लोबल टेक एक्सपोज में अभी होम रोबोट्स काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं भाई, और ये वैक्यूम क्लीनर्स तक लिमिटेड नहीं है, मतलब लॉन्ड्री फोल्डिंग, ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग, किचन असिस्टेंस, सब कुछ ट्रेन होगा उसमें। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम टेक टॉक। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसका रीजन बहुत सिंपल है, पीपल वॉन्ट कन्वीनियंस और आज की जनरेशन के पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए स्मार्ट होम्स रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सम कंपनीज इमोशनल कंपेनियन रोबोट्स भी बना रही हैं, स्पेशली एल्डरली पीपल के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि लोनलीनेस भी सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगी। और फ्यूचर होम्स काफ़ी साइंस फिक्शन वाले मूवीज जैसे लगने लगेंगे, यानी कि साइंस फिक्शन जो आप देखते हो ना वो रियल हो जाएगा। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्योंकि मैं हमेशा से कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे सिर्फ नंबर्स समझ में आते हैं या मुझे सिर्फ आर्ट समझ आती है, तो मुझे साइंस में ना उतना चीज़ें समझ नहीं आती, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना कि क्या आने वाला टाइम इतना फास्ट होने वाला है या आने वाला टाइम इतना ज़्यादा एडवांस होने वाला है। आपको क्या लगता है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: You're listening to Radio Olive 106.3

Radio Olive Park. Song of the Year. Yeah, Ghana.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विला जियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विला जियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विला जियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। TNC अप्लाई।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Testing 1-2. Yeah, ladies and gentlemen, when they look at you with their eyes and with a glare, they seem to control and override the very heart behind the command. You want, don't even stay for a second. The space that awareness is about to make you anxious. Avaaz niche. Boom, boom.

एप्पल का नेक्स्ट एरा शायद टिम कुक के बाद कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है. टेक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं जो नए सीईओ आ रहे हैं उनको लेकर, जिनका नाम जॉन टर्नर्स है और फ्यूचर एप्पल लीडरशिप की स्ट्रॉन्ग यू नो कंटेंडर माने जा रहे हैं वो. एंड आई वाज लाइक यार, मुझे तो वैसे साइंस के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें पढ़ना पसंद है, और अगर मैं बात करूँ लीडरशिप की तो लीडरशिप जब चेंज होती है तो टेक कंपनीज में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट आते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. शो का नाम लाइफ मस्त है. स्टीव जॉब का जब एरा था तो इनोवेशन बहुत फोकस था, जब टिम कुक का एरा आया तो बिजनेस एक्सपेंशन हुआ प्लस इकोसिस्टम को पावर मिलाया गया. अब नेक्स्ट एरा किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स द बिग क्वेश्चन. और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल फ्यूचर फोकस कर रहा है स्मार्टर सीरीज पर, AI इंटीग्रेशन पर, वेरिएबल डिवाइसेस पर और मिक्स्ड रियलिटी इकोसिस्टम पर. पर थिंग्स इंटरेस्टिंगली ये है कि एप्पल अब सिर्फ फोन कंपनी नहीं है, वॉच, एयरपॉड्स, मैक, आईपैड, विजन डिवाइसेस, लाइफस्टाइल का इकोसिस्टम बन चुका है. सो सब इंटरकनेक्टेड है और एप्पल का बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो हार्डवेयर नहीं बल्कि आदत है. वंस पीपल एंटर एप्पल इकोसिस्टम, बाहर आना बहुत मुश्किल है बॉस. सो आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रही हूँ या फिर नहीं? आपको लगता है कि नहीं एंड्रॉयड के आगे तो कुछ नहीं है यार? 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर. बाय द वे दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. और इसी के साथ थोड़ी देर में अब आपको एक सुपरहिट गाने सुनने के साथ साथ सुपरहिट आवाज भी सुनने को मिलेगी. तब तक के लिए आई विल से कि मैं जा रही हूँ, आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई

अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि वीकेंड पे वो चार दोस्त होना जरूरी है। जरूरी है कि अंदर से ना बस मस्ती होनी चाहिए, अंदर की वाइब जिंदा होनी चाहिए। नहीं, आपकी इन्हीं वाइब्स के साथ आपका वीकेंड हैप्पी बनाने आ गया जी। मैं जी आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करने आ गया। सेलिब्रेशन की जब बात आती है तो बढ़िया से गाने, बढ़िया सा खाना और बढ़िया सा घूमना घुमाना हो जाना चाहिए। तो आज का वीकेंड आप कहाँ बिताने जा रहे हैं, कहाँ पर हैं आप, कौन सी शाम आप रंगीन करने वाले हैं, मुझे बताइए, ताकि उस गानों के साथ तड़का मार के उस शाम को चार चांद भी लगा दूं और आपका वीकेंड हैप्पी बना दूं जनाब, ताकि आप भी कह सके जियो बिंदास। आरों कहीं जाए, कहीं सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। TNC अप्लाई।

यार पुरानी फिल्में और मम्मी के डायलॉग्स, यादों का बॉक्स ऑफिस हमेशा होता है टॉप नॉच। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। याद है जब केबल पे 3 बजे की एक मूवी देखने के लिए पूरा लंच जल्दी से खत्म करके सोफे पे बैठ जाते थे और मम्मी बोलती थी रोज यही पिक्चर देखोगे, पढ़ाई कब करोगे। भाई वो जमाना ही अलग था, रिमोट भी मम्मी के पास था, पेशेंस भी। वैसे रेट्रो हो या मम्मी की डांट का क्लास, आपको क्या, अब तो आप बड़े हो गए जनाब। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहिए जियो पिंड।

0: आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
3: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Radio

अच्छा कभी आपके साथ ऐसा वाला ड्रामेटिक सीन हुआ है, थ्रिलर वाला, कि बॉस उसी लिफ्ट में चढ़ गए और अब आप भी उसी लिफ्ट में आ गए और अब आप आमने सामने बॉस के हो, बॉस भले ही फोन चला रहे हैं या फिर फोन रख दिया है पॉकेट पे, अब आया जी 7th फ्लोर तक या 12th या 14th फ्लोर तक पहुंचने का जिम्मा, क्या कोई सवाल तो नहीं पूछ लिया जाएगा अटपटा सा। ऑफिस के लिप सिंग भी ना लगता है थ्रिलर जब बॉस सामने हो के लग। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूं। हर किसी की लाइफ में एक विलन तो जरूर होता है, बॉस, बिल्स या मॉर्निंग अलार्म, लेकिन हीरो तो जनाब वही होता है जो रोज उठ के काम पे निकले बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के। लेकिन म्यूजिक तो जनाब हम आपके सफर में दे ही देते हैं, क्योंकि यार देखो थ्रिलर्स तो आते रहेंगे, तो जिस प्रेजेंट मोमेंट में, करंट मोमेंट में हो उसको स्पेशल बनाओ ना, गुनगुनाओ ना, क्योंकि भाई जिंदगी हो ड्रामेटिक और थोड़ी सी मस्त, ताकि जिंदगी भी गए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।

0: हनी सिंगर गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 May तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: अच्छा, जब पूरा हफ्ता वीकडेज अपना सैलेड्स खाकर निकाल देते हैं, कैलोरीज उंगलियों पर गिनते रह जाते हैं, आज वीकेंड वाले दिन तो यार चीट डे कर ही सकते हैं नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करो। और हैप्पी तो तभी होता है जब आप एक दिन, सिर्फ एक दिन कैलोरीज का डर हटा दो। कैलोरीज काउंट करने वाले लोग वीकेंड में ना गूगल से दोस्ती तोड़ देते हैं, तो बस दोस्ती तोड़ो। पराठे हो या पास्ता का क्रश, सुनते रहो बस आप रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो तिंदास। गाने एंजॉय करो और खाना भी, आज के दिन ड्रामे नहीं बनते। और गानों को एंजॉय करने के लिए तो मस्त एनर्जी में रहना होगा ना, एनर्जी आएगी बढ़िया खाने से, मन पसंद खाने से। वॉल्यूम बढ़ाओ, साथ में गाओ जियो बिंदास, स्टे ट्यून।
1: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

भाई ट्रिविया का टाइम दिमाग का गेम, फिल्मी दुनिया का असली फेम। 106.3 रेडियो ऑलिक्स आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करूं। अच्छा बताओ कौन से फिल्म का आइकॉनिक गाना है, एक गरम चाय की प्याली हो। वीकेंड का दिन है, खूब प्यालियां पी रहे हो, लेकिन इस गरम चाय की प्याली का गाना कौन सी मूवी का आइकॉनिक गाना बन गया? हिंदू, शहनशाह का स्वैग प्लस चाय का जग। थोड़ा सा थिंक करो दोस्तों, क्योंकि भाई सवालों का स्विंग या यादों का ट्रस्ट। सुनते रहिए रेडियो ऑलिक्स, जियो बिंदास।

0: वाओ, हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो, कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: जवाब मिला तो दिल खिला। ट्रिविया में आपने अपना कमाल किया। वाह भाई वाह। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज। मैं हूँ आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हर दिल जो प्यार करेगा, SRK सलमान की दोस्ती प्लस चाय की केमिस्ट्री। एक लिसनर ने लिखा, मुझे तो आज भी वो गाना सुनते ही कटिंग चाय याद आ जाती है। वैसे फिल्मों का मैजिक तो वही है, गाना चलाओ और यादें घुल मिल जाए उस गाने के साथ। तो भाई गाने हो पुराने या मेमोरी का ब्रस्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
1: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
0: रेडियो ऑलिव पर
3: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है,
0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: ये गाना

भाई रील पे हैप्पी, रियल में सैपी, वीकेंड की दुनिया भी है अलग ही स्नैपी। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज। मैं हूँ आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। कोई जिम के वीडियोस डाल रहा होता है और असली में चाय प्लस समोसा खा रहा होता है ना? लाइफ परफेक्ट नहीं होती, फिल्टर्स लगा के दिखानी पड़ती है बॉस, क्योंकि भाई लाइक हो या ट्रुथ का कॉन्ट्रास्ट, हर मोमेंट में सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अच्छा वैसे वीकेंड के असली मजे तो हम लोगों ने बचपन में लिए नहीं, सुबह सुबह लेट उठना और उठने के बाद आलू के पराठे, हरी चटनी, और उस समय चटनी नहीं भी पसंद थी ना टमाटर पसंद करने वाले भी केचप खूब चाट चाट के खाते थे नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ आपके साथ। और वीकेंड की शुरुआत ही टाइनी टीवी से हुआ करती थी। मुझे याद है पहले आता था बॉब द बिल्डर और बहुत सारे कार्टून आते थे, नॉडी, पॉपाय और कितने सारे कार्टून, और एक तो वन एंड ओनली जो हमेशा सबके दिलों के करीब रहेगा, टॉम एंड जेरी। कौन सी आपकी कार्टून में कौन सी सीरीज थी जो फेवरेट थी मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और कौन सी वो कार्टून थी या कौन सा वो करेक्टर था जो आपका फेवरेट रहा आपके वीकेंड के दिन पे, जो आपका वीकेंड चुटकियों में निकाल दिया करता था। तो उस वीकेंड को याद करके इस वीकेंड को खास बनाते हैं, आपको प्यारा सा गाना सुनाते हैं ताकि आपका दिल भी कहे जियो बिंदास।

0: वैसे दोपहर की नींद जिंदगी का बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब दिन में सोने का अलग ही मजा है। अब समझ आता है कि बचपन में जब खेलने को मम्मी जाने नहीं दिया करती थी और दिन में सुला देती थी, क्यों सुलाती थी, खुद को नींद आती थी लेकिन हमें भी कहती थी सो जाओ, क्योंकि हम नहीं सोए तो वो नहीं सो पाएंगे ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूं। वैसे वीकेंड नैप एक ऐसी चीज है जिसमें अलार्म सेट नहीं करते, सपने सेट हो जाते हैं। वैसे जो वीकेंड में नैप नहीं लेता ना, उसका अकाउंट बैलेंस और थकान दोनों सेम रहती है। तो नींद हो या ड्रीम्स का ब्लास्ट, आपको क्या, आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और जियो बिंदास।
1: जब माधुरी मुस्कुराती है वक्त भी ठहर जाता है,
2: मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा,
1: और बॉलीवुड फिर से 90s में लौट आता है। हैप्पी बर्थडे टू द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने

0: भाई वीकेंड पे मिले थे मॉल में, पर नेक्स्ट डे तक हो भी गया, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एक कॉल में।
1: 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, आपके सब हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वीकेंड के डेट्स सबसे रिस्की होते हैं जनाब, वैसे बजट खत्म और पेशेंस भी। अगर आपका भी प्यार फ्राइडे आया और नेक्स्ट डे गया तो टैग करो इंस्टा पे वीकेंड अफेयर्स और रेडियो ऑलिव को, क्योंकि भी लव हो या हार्ट ब्रेक का कास्ट, हर मोमेंट में सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: नया लुक, नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
3: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
2: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। TNC अप्लाई।

मेरी को कुछ गाने जो याद दिला दे एक्स स्कूल या कोई फ्रेंड्स का टेक्स्ट, वो गाने कतई जहर बन के दिल में उतर जाते हैं नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव साहब के दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक लिसनर का मैसेज आया है, लिखते हैं कि आरजे भाई सलाम आपको, और जो गाना अभी आपने चलाया ये सुनते ही मुझे वो पहली जर्नी याद आ गई जब मैं पहली बार कतर लैंड किया था, क्योंकि जैसे ही मैंने पहली टैक्सी पकड़ी उसमें देसी गाना सुनकर, उससे पहले गाना सुनकर मुझे फील आया कि जैसे मैं घर से बहुत दूर आया ही नहीं। भाई बॉलीवुड का तड़का तो हर जगह है ही ना जनाब, वैसे कुछ गाने दिल के पासवर्ड जैसे होते हैं, एक बार बजा तो इमोशंस अनलॉक। तभी तो कहता हूँ जनाब, म्यूजिक हो या मेमोरी का ट्रस्ट, ऑलवेज सुनते रहिए रेडियो ऑलिव।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: जैसे एक अच्छा सा शो होता है उसके बाद स्टेज पे पर्दे गिर जाते हैं, ठीक उसी तरह से वीकेंड का कर्टन गिरा पर यादों की रोशनी जिंदा रहेगी, है ना। ये किरदार आपके लिए यूं ही हर वीकेंड पे और इवन वीकेंड के वीकडेज में मिड नाइट लॉन्च में रात को 10 से 12 बजे और वीकेंड्स पे हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करता रहेगा और आपका हर एक दिन स्पेशल बनाता रहेगा। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा था आपके साथ और अभी भी करते रहेंगे जनाब। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस फिल्मी फनी और नॉस्टैल्जिया वीकेंड राइड का हुआ पैकअप, लेकिन अगले फ्राइडे तक इंतजार क्यों करना, आप मुझे डेली सुन सकते हैं मिडनाइट लाउंज में सैटरडे टू वेडनेसडे। आपके मन पसंदीदा गाने और आपके जिंदगी का सफर एक मस्त कॉम्बिनेशन बनेगा जनाब, और जब आप और हम मिल जाएं तो शाम का समय अलग बन जाता है। तो चलिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्यादा ज्यादा एक बढ़िया सा गाना लगा के जा रहा हूँ, इसे एंजॉय कीजिए। ऑल इन रेडियो ऑल अप टू यू बिंदास,
1: कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन। Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: Attitude. Radio Olive. Club Olive. Keep listening. नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: इट्स टाइम टू पार्टी

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।